0: उन्होंने कहा कि हम गुनाहगारों की तरफ भेजे गए हैं।
1: لنرسل عليهم حجارة من طين
0: ताकि उन पर खंगर बरसाएं।
1: مسومة عند ربك للمسرفين
0: जिन पर हद से बढ़ जाने वालों के लिए तुम्हारे परवरदिगार के यहां से निशान कर दिए गए हैं।
1: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين
0: तो वहां जितने मोमिन थे उनको हमने निकाल लिया।
1: फमा वजदना फीहा गैर बैत मिनल मुस्लिमीन
0: और उसमें एक घर के सिवा मुसलमानों का कोई घर न पाया।
1: वतरकना फीहा आयतन लिल्लज़ीन यखाफून العذاب الأليم
0: और जो लोग अजाब अलीम से डरते हैं उनके लिए वहां निशानी छोड़ दी।
1: वफी मूसा इज अरसलनाहु इला फिरऔन बिसुल्तान मुबीन
0: और मूसा के हाल में भी निशानी है जब हमने उनको फिरऔन की तरफ खुला हुआ मौजजा देकर भेजा।
1: फतवल्ला बिरुक्निही वकाल साहिरुन औ मजनून
0: तो उसने अपनी कुव्वत के घमंड पर मुंह मोड़ लिया और कहने लगा ये तो जादूगर है या दीवाना।
1: فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ
0: तो हमने उसको और उसके लश्करों को पकड़ लिया और उनको दरिया में फेंक दिया और वो काम ही काबिले मलामत करता था।
1: وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ
0: और आद की कौम के हाल में भी निशानी है जब हमने उन पर नामुबारक हवा चलाई।
1: मा तज़रु मिन शैइन अतत अलैहि इल्ला जअलतहु कर्रमीम
0: वो जिस चीज पर चलती उसको रेजा रेजा किए बगैर न छोड़ती।
1: वफी समूद इज़ क़ील लहुम तमत्तऊ हत्ता हीन
0: और कौम समूद के हाल में भी निशानी है जब उनसे कहा गया कि एक वक्त तक फायदा उठा लो।
1: فعتوا عن امر ربهم فاخذتهم الصاعقه وهم ينظرون
0: तो उन्होंने अपने परवरदिगार के हुक्म से सरकशी की सो उनको कड़क ने आ पकड़ा और वो देख रहे थे।
1: فمس

0: उस रोज ना तो किसी इंसान से उसके गुनाहों के बारे में पुरसिश की जाएगी और ना किसी जिन से।
1: फबिअय्यी आलाई रब्बिकुमा तुकज्जिबान,
0: तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे।
1: يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ,
0: गुनहगार अपने चेहरे ही से पहचान लिए जाएंगे तो पेशानी के बालों और पांवों से पकड़ लिए जाएंगे।
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ,
0: तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे।
1: هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ,
0: यही वो जहन्नम है जिसे गुनाहगार लोग झुटलाते थे।
1: يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آن,
0: वो दोजख और खौलते हुए गर्म पानी के दरमियान घूमते फिरेंगे।
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ,
0: तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे।
1: वलिमन खौफ मकाम रब्बिहि जन्नतान,
0: और जो शख्स अपने परवरदिगार के सामने खड़े होने से डरा उसके लिए दो बाग हैं।
1: फबिअय्यी आलाई रब्बिकुमा तुकज्जिबान,
0: तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे।
1: अफनान,
0: उन दोनों में बहुत सी शाखें यानी किस्म किस्म के मेवों के दरख्त हैं।
1: फबिअय्यी आलाई रब्बिकुमा तुकज्जिबान,
0: तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे।
1: फीहिमा अय्नान तजरियान,
0: उनमें दो चश्मे बह रहे हैं।
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ,
0: तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे।
1: فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ,
0: उनमें सब मेवे दो दो किस्म के हैं।
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ,
0: तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे।
1: मुत्तकी

0: अहले जन्नत ऐसे बिछौनों पर जिनके अस्तर अतलस के हैं तकिया लगाए हुए होंगे और दोनों बागों के मेवे करीब झुक रहे हैं।
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: فِيهِ

0: जान रखो कि दुनिया की जिंदगी महज खेल और तमाशा और जीनत और आराइश और तुम्हारे आपस में फख्र और सताइश और माल और औलाद की एक दूसरे से ज्यादा तलब और ख्वाहिश है। इसकी मिसाल ऐसी है जैसे बारिश के उससे खेती उगती और किसानों को खेती भली लगती है, फिर वो खूब जोर पर आती है, फिर ऐ देखने वाले तू उसको देखता है कि पक कर जर्द पड़ जाती है, फिर चूरा चूरा हो जाती है और आखिरत में काफिरों के लिए अजाब शदीद और मोमिनों के लिए खुदा की तरफ से बख्शिश और खुशनुदी है, और दुनिया की जिंदगी तो मताए फरेब है।
1: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض

ताकि जो मतलब तुमसे फौत हो गया हो उसका गम न खाया करो और जो तुमको उसने दिया हो उस पर इतराया न करो और खुदा किसी इतराने और शेखी बघारने वाले को दोस्त नहीं रखता।

0: आपकी समातों से टकराती ये आवाज यूसीपी की दुनिया एफएम 92.6।
1: सामईन, वक्फे के बाद एक बार फिर खुशामदीद। यहां तक जो कुछ जिक्र किया गया है ये मदीने के दाखली हालात से मुताल्लिक था। बैरून मदीना मुसलमानों के सबसे कड़े दुश्मन कुरैश थे और 13 साल तक जबकि मुसलमान उनके जेरे दस्त थे, दहशत मचाने, धमकी देने और तंग करने के तमाम हथकंडे इस्तेमाल कर चुके थे, तरह तरह की सख्तियां और मजालिम कर चुके थे। मुनज़्ज़िम और वसी प्रोपेगेंडे और निहायत सब्र आजमा नफ्सियाती हरबे इस्तेमाल में ला चुके थे। पर जब मुसलमानों ने मदीना हिजरत की तो कुरैश ने उनकी ज़मीनें, मकानात और माल और दौलत सब कुछ जब्त कर लिया और मुसलमानों और उनके अहलो याल के दरमियान रुकावट बनकर खड़े हो गए, बल्कि जिसको पा सके कैद करके तरह तरह की अजियतें दी। फिर इसी पर बस न किया बल्कि सरबराह दावत हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम को कत्ल करने और आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की दावत को बेखौबुन से उखाड़ने की धमकियां देने लगे और उसके साथ खौफनाक साजिशें की और उससे रुबा अमल लाने के लिए अपनी सारी सलाहियतें सर्फ कर दी। जब मुसलमान किसी तरह बच बचा कर कोई 500 किलोमीटर दूर मदीना की सरजमीन पर जा पहुंचे तो कुरैश ने अपनी साख का फायदा उठाते हुए घिनौना सियासी किरदार अंजाम दिया। यानी ये चौंका हरम के बाशिंदे और बैतुल्ला के पड़ोसी थे और उसकी वजह से उन्हें अहले अरब के दरमियान दीनी क़यादत और दुनियावी रियासत का मनसब हासिल था। इसलिए उन्होंने जजीरतुल अरब के दूसरे मुशरिकीन को भड़का और वरगला कर मदीने का तकरीबन मुकम्मल बायकॉट करा दिया, जिसकी वजह से मदीना की दरामदात निहायत मुख्तसर रह गई, जबकि वहां मुहाजरीन पनाहगीरों की तादाद रोज बरोज बढ़ती जा रही थी। दर हकीकत मक्के के इन सरकशों और मुसलमानों के इस नए वतन के दरमियान हालत जंग कायम हो चुकी थी और ये निहायत अहमकाना बात है कि इस झगड़े का इल्जाम मुसलमानों के सर डाला जाए। मुसलमानों को हक पहुंचता था कि जिस तरह इनके अमवाल जब्त किए गए थे उसी तरह वो भी इन सरकशों के अमवाल जब्त करें, जिस तरह उन्हें सताया गया था उसी तरह वो भी इन सरकशों को सताएं, और जिस तरह मुसलमानों की जिंदगियों के आगे रुकावटें खड़ी की गई थी उसी तरह मुसलमान भी इन सरकशों की जिंदगियों के आगे रुकावटें खड़ी करें और इन सरकशों को जैसे को तैसे वाला बदला दें ताकि उन्हें मुसलमानों को तबाह करने और बेखौबुन से उखाड़ने का मौका न मिल सके। ये थे वो कज़ाया और मसाइल जिनसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम को मदीना तशरीफ लाने के बाद बहैसियत रसूलो हादी और इमामों कायद वास्ता पेश रहा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने इन तमाम मसाइल की तय मदीना में पैगंबराना किरदार और कायदाना रोल अदा किया और जो कौम नरमी और मोहब्बत या सख्ती और दरिश्ती जिस सलूक की मुस्तहिक थी उसके साथ वही सलूक किया और उसमें कोई शुबा नहीं कि रहमत और मोहब्बत का पहलू सख्ती और दुरुस्ती पर गालिब था। यहाँ तक कि चंद बरसों में ज़माम-ए-कार इस्लाम और अहले इस्लाम के हाथ आ गई। सामईन, आज हम अपने इस सिलसिले को यहीं पर बर्खास्त करते हैं और इंशाअल्लाह अगले आने वाली नशिस्त में हम नए माशरे की तश्कील, मस्जिद नबवी की तामीर और मुसलमानों में भाईचारगे जैसे मामलात का जिक्र करेंगे। इसके साथ ही कासिम भट्टी को अगली नशिस्त तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगेबान।
0: आपकी समातों से टकराती ये आवाज़ यूसीपी की दुनिया एफएम 92.6।

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उतने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो।

0: वही प्रोग्राम लर्निंग आउटकम्स हैं जो कि हमने भी अचीव करने हैं और उन्होंने भी अचीव करने हैं. दैट इज़ वाई वी दी डिग्रीज आर कंसिडर इक्विवेलेंट एंड वंस यू गेट दिस डिग्री फ्रॉम हियर यू वुड बी एबल टू कम्पीट विद देम इन देयर जॉब मार्केट. इससे न सिर्फ आप नेशनली बल्कि इंटरनेशनली आप एक बहुत आपके प्रॉस्पेक्ट्स बहुत बढ़ जाते हैं. और यहाँ पे मैं एक चीज़ और बताता चलूँ कि जो बच्चे इस वक्त मुख्तलिफ इंजीनियरिंग में एंटर होना चाह रहे हैं वो PEC की वेबसाइट ज़रूर चेक करें. आया वो यूनिवर्सिटी जहाँ वो अप्लाई कर रहे हैं और वो प्रोग्राम जहाँ वो अप्लाई करना चाह रहे हैं वो PEC से Level 2 पे एक्रेडिटेड है भी या नहीं. अगर Level 2 एक्रेडिटेड नहीं है तो मैं आपको बताता चलूँ कि आप एक बहुत कीमती मौका ज़ाय करेंगे. Level 2 एक्रेडिटेड प्रोग्राम में इंडक्ट हों ताकि आपकी डिग्री जो है वो वॉशिंगटन कॉलेज एक्रेडिटेड हो. यहाँ पे हम इससे आगे चलते हैं और डॉक्टर फैजान से मैं अब सवाल करूँगा कि आपने बाहर से पढ़ा, आपने गालबन फुल ब्राइट स्कॉलरशिप हासिल की, तो पाकिस्तानियों के लिए फुल ब्राइट स्कॉलरशिप्स की क्या स्कोप है और उसको हासिल करने के लिए क्या स्टेप्स लेने चाहिए.
1: बिल्कुल जी, फुल ब्राइट स्कॉलरशिप एक बहुत ज़बरदस्त स्कॉलरशिप है, बड़ी प्रेस्टिजियस स्कॉलरशिप है जिसमें आप फुली फंडेड स्टडी कर सकते हैं US की किसी यूनिवर्सिटी के अंदर और आपके ट्रैवल, आपकी लॉजिंग, आपकी ट्यूशन हर चीज़ कवर होती है इसके अंदर. इसमें हर साल पाकिस्तान के तकरीबन 200 के करीब मास्टर्स और PhD के स्टूडेंट्स अमेरिका जाते हैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में, मुख्तलिफ स्टेट्स में, और वहाँ पर अपनी स्टडीज़ को परसू करते हैं. इंजीनियरिंग में बेतहाशा लोग फुल ब्राइट को परसू करते हैं और सिविल इंजीनियरिंग स्पेशली में बहुत कम लोग अप्लाई करते हैं एज़ कम्पेयर टू कंप्यूटर साइंस या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग. तो मैं ये समझता हूँ कि सिविल इंजीनियरिंग में फुल ब्राइट हासिल करने के चांसेस काफ़ी वसी हैं अगर आप अपनी एप्लीकेशन को ज़रा स्ट्रॉन्ग करें, अपने प्रॉस्पेक्ट को, अपने प्रोफाइल को ज़रा स्ट्रॉन्ग करें. तो फुल ब्राइट एक बहुत अच्छा मौका है अमेरिका में स्टडी करने के लिए.
0: जी डॉक्टर फैजान, आपसे इसी टॉपिक पे मजीद बातचीत करेंगे लेकिन यहाँ पे हम एक लेंगे छोटी सी ब्रेक. वी विल बी बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक. कीप लिसनिंग FM 92.6 UCP की.

0: आप सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.6 UCP की दुनिया।
1: वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया और हम लोग इस वक्त डिस्कस कर रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग को। अभी ब्रेक पे जाने से पहले डॉक्टर फिजान बता रहे थे फुल ब्राइट स्कॉलरशिप के मुतालिक। इससे पहले कि मैं दोबारा डॉक्टर फिजान के पास जाऊं और मजीद मालूमात हासिल करूं फुल ब्राइट स्कॉलरशिप की, यहां पे मैं ये बताता चलूं कि UCP और खासकर डिपार्टमेंट सिविल इंजीनियरिंग में आपको बहुत सारी मुख्तलिफ स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं, जैसे कि जो पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के स्टूडेंट्स हैं उनको डायरेक्टली 25% स्कॉलरशिप अवेलेबल होती है गिवन दैट दे मेंटेन अ सर्टेन CGPA। देन मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप्स हैं जो कि अप टू 100% तक अवेलेबल है इफ़ यू मेंटेन अ सर्टेन CGPA। इन एडिशन यू हैव किनशिप स्कॉलरशिप, अगर आपके बहन या भाई कोई UCP से पढ़ चुके हैं तो आपको एक स्कॉलरशिप दी जा सकती है। नीड बेस्ड स्कॉलरशिप्स, डिसेबिलिटी स्कॉलरशिप्स, ये चंद वो मजीद स्कॉलरशिप्स हैं जो स्टूडेंट्स को अवेलेबल होती हैं। अब चूंकि हम स्कॉलरशिप्स की बात कर रहे थे तो मैं वापस आता हूँ अपने मेहमान डॉक्टर फैजान की तरफ और उनसे मजीद मालूमात लूंगा फुल ब्राइट स्कॉलरशिप की।
2: जी, जैसे मैं बता रहा था कि इस फुल

0: बट में हर फील्ड के लोग अप्लाई करते हैं और सिविल इंजीनियरिंग के लोग मेरी नज़र में बहुत कम अप्लाई करते हैं और ज़्यादा स्कोप है सिविल इंजीनियरिंग का. US में बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ सिविल इंजीनियरिंग के मुख्तलिफ फील्ड्स पे रिसर्च कर रही हैं और अगर आप एक मास्टर्स और PhD की एप्लीकेशन फिल करते हैं तो एज़ कम्पेयर टू सम ऑफ द मोर प्रोमिनेंट फील्ड्स आपके चांसेस शायद ज़्यादा होंगे. इसका मतलब ये नहीं कि आपको स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट नहीं होना पड़ेगा, आपको डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट होना पड़ेगा, बट आई वुड इनकरेज एवरीबडी इवन सिविल इंजीनियरिंग बैचलर्स टू डेफिनेटली थिंक अबाउट फुलब्राइट स्कॉलरशिप. इसमें एक चीज़ है जिससे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स घबरा जाते हैं और वो है GRE. GRE एक टेस्ट है, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, जिसमें मैथ्स और इंग्लिश को टेस्ट किया जाता है और उसकी बेस पे आपकी ग्रेजुएट स्टूडेंट कैपेबिलिटीज को एक तरह से असेस किया जाता है. और US में अक्सर यूनिवर्सिटीज GRE का स्कोर डिमांड करती हैं और फुलब्राइट स्कॉलरशिप भी GRE का स्कोर डिमांड करती हैं. तो मैं ये मेंशन करना चाहूँगा कि GRE कोई बहुत मुश्किल टेस्ट नहीं है, यकीनन एक लेंथी प्रिपरेशन प्रोसीजर है उसका, लेकिन हमारे स्टूडेंट्स माशाल्लाह से इतने काबिल होते हैं कि वो आराम से GRE को डील कर सकते हैं. तो GRE से घबरा कर आपको अमेरिकन अपॉर्चुनिटीज़ को बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए.
1: जी बहुत शुक्रिया. इसके अलावा क्या US में TOEFL रिक्वायर्ड है या IELTS भी चल जाता है?
0: TOEFL और IELTS दोनों ही एक्सेप्टेबल होते हैं. बेसिकली जब आप यूनिवर्सिटीज़ में ग्रेजुएट एप्लीकेशंस को असेस कर रहे थे, जैसे आजकल हम लोगों के पास यूनिवर्सिटी ऑफ मिजूरी में ग्रेजुएट एप्लीकेशंस आई हुई हैं, तो हम लोग देखते हैं डेफिनेटली कि उनकी इंग्लिश की क्या कैपेबिलिटी है. तो हम लोगों ने कोई हार्ड एंड फास्ट TOEFL ओनली या IELTS ओनली पॉलिसी नहीं बनाई हुई. कोई भी टेस्ट जो कि स्टैंडर्डाइज टेस्ट है हमें एक आइडिया दे देता है और उसकी बेस पे हम इंटरव्यू कॉल कर लेते हैं. और ऑफ कोर्स इंटरव्यू में तो फिर पता चल ही जाता है कि किसकी स्पोकन लैंग्वेज कैपेबिलिटी कितनी है. तो डेफिनेटली एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट, चाहे वो IELTS हो या TOEFL हो, वो आपको दे देना चाहिए और दोनों ही एक्सेप्टेबल होते हैं.
1: अच्छा, अगर BSc सिविल इंजीनियरिंग करते हैं तो उसके बाद जॉब प्रॉस्पेक्ट्स क्या होंगे? अगर हम इस पे आए तो आपके पास गवर्नमेंट जॉब्स हैं, आपके पास प्राइवेट सेक्टर है. अगर आप पाकिस्तान में देखें तो हमारे पास गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं, हमारे पास प्राइवेट सेक्टर्स हैं. ना सिर्फ ये कि आप इंजीनियरिंग की जॉब कर सकते हैं, आप एकेडमिक्स में भी आ सकते हैं, आप यूनिवर्सिटीज में पढ़ा सकते हैं. अगेन देर आर प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज, देर आर गवर्नमेंट सेक्टर यूनिवर्सिटीज, एंड वाइल्ड यू टीचिंग यू कैन वर्क एज अ कंसल्टेंट एज वेल. तो एक कंसल्टेंसी फर्म में काम करना, एक कंट्रैक्टर फर्म में काम करना, ये दोनों में क्या क्या फ़र्क है, अगर इस पर कुछ रोशनी डालें?
0: मेरा ख्याल है दोनों ही एक्सपीरियंसेस बहुत वाइटल हैं, बहुत ज़रूरी हैं और दो मुख्तलिफ किस्म के एक्सपीरियंसेस हैं ये. कॉन्ट्रैक्टर के साथ जॉब करना, एक्चुअली इम्प्लीमेंट करना है डिज़ाइन को, उसमें ह्यूमन फैक्टर्स बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाते हैं क्योंकि आप सिर्फ कंप्यूटर पर बैठ के डिज़ाइन नहीं कर रहे. तो आप टेक्निकली साउंड हैं तो आप बहुत अच्छा डिज़ाइन कर पाएंगे, लेकिन अगर आप टेक्निकली साउंड हैं लेकिन आप ह्यूमन डीलिंग में अच्छे नहीं हैं तो आप एक कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर कामयाब नहीं हो पाएंगे. तो इस वजह से कॉन्ट्रैक्टर जॉब में शायद आपके ज़्यादा वैरायटी ऑफ स्किल्स काम आते हैं और शायद आपके टेक्निकली थोड़ा सा कम साउंड होना भी चल सकता है. हाउएवर इन ए डिज़ाइन फर्म आपकी टेक्निकलिटी सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट होनी चाहिए, उसमें आप सबसे ज़्यादा साउंड होने चाहिए. और ऑफकोर्स ह्यूमन स्किल्स वहाँ पर भी काम आते हैं, लेकिन शायद उसने वैरायटी ऑफ लोगों से आप डील नहीं कर रहे होते, तो इट्स ईजियर दैट वे. मेरा ख्याल है कि अगर आप एक पूरे सिविल इंजीनियरिंग करियर की बात करें तो आप एंड अप हो सकते हैं किसी भी साइड पर, लेकिन आपको एटलीस्ट एक्सपीरियंस दोनों साइड्स का होना चाहिए ताकि आप बाद में जब डील करें दूसरी साइड से, फॉर एग्जांपल अगर आप एक कंसल्टेंसी में डिज़ाइन का करियर बना रहे हैं तो आपको डेफिनेटली कॉन्ट्रैक्टर से डील करना पड़ेगा एंड वाइस वर्सा. तो इस वजह से दोनों साइड्स का एक्सपीरियंस होना या एटलीस्ट एक्सपोजर होना ज़रूरी है मेरे ख्याल में.
1: अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ जो बहुत अहम है आजकल और जिसका कहना चाहिए इज अ बज़ वर्ड, दैट इज़ AI. तो AI क्या है और क्या इसके सिविल इंजीनियरिंग में कोई इम्पोर्टेंस है या नहीं है, इसके मुतालिक अगर हम बात करें तो डॉक्टर फिजान, आप AI यूज़ कर रहे हैं या अगर कर रहे हैं तो सिविल इंजीनियरिंग में किस फील्ड में आप AI समझते हैं यूज़ हो रही
0: है? अच्छा, AI का यूज़ डेफिनेटली हर जगह पे हो रहा है इस टाइम, लेकिन कुछ जगह पे डायरेक्टली हो रहा है, कुछ जगह पे इनडायरेक्टली हो रहा है. डायरेक्टली यूज़ की मिसाल ऐसे है कि जैसे आप डिज़ाइन के सॉफ्टवेयर्स हैं उनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको असिस्ट कर सकती है आप डिज़ाइन करने में, तो आपका बहुत सारा वर्कलोड रिड्यूस हो जाता है उसमें. ऑटोडेस्क वगैरह के डिफरेंट प्लगइन्स आ रहे हैं जो कि AI एनेबल्ड हैं, मैं पिछले साल एक बिल्डर्स शो पे था लॉस वेगस में, वहां पर एक प्रेजेंटेशन देखी मैंने जिसमें एक प्रोफेशनल स्पोकन इंस्ट्रक्शंस के थ्रू एक घर का डिज़ाइन बनवा रहे थे। सो यहां तक बात पहुंच चुकी है डिज़ाइन में, और ये एक डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ AI की एग्जाम्पल है। इनडायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन जो है वो हर जगह हो रही है और पाकिस्तान में भी हो रही है, वो है जनरेटिव AI, यानी कि चैट GPT जैसे जनरेटिव AI लैंग्वेज सॉफ्टवेयर्स जो हैं उनके थ्रू लोग चीज़ों को सॉर्ट आउट करने में उनसे हेल्प ले रहे हैं, और उससे यकीनन उनका वर्कलोड काफ़ी कम हो रहा है। तो AI की यूज़ इस तरह से मैं डिवाइड करता हूँ, डायरेक्ट यूज़ और इनडायरेक्ट यूज़।
1: जी, हम AI पे बात कर रहे थे, यहाँ पे हम एक छोटी सी ब्रेक लेंगे। वी विल बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। यू आर लिसनिंग FM 92.6 UCP की।

0: 94.6 बोरियत को भगा दो।
1: वेलकम बैक एवरीबॉडी, यू आर लिस्निंग टू FM 92.6 यूसीपी की दुनिया। और ब्रेक पे जाने से पहले हम लोग बात कर रहे थे एप्लीकेशन ऑफ AI इन सिविल इंजीनियरिंग। इसी पे अगर हम आगे चलें, जैसे कि डॉक्टर फिजान ने बात की कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ AI है, अब रिसर्च में अगर हम बात करें तो रिसर्च में AI की एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है। आप स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में बात करें, आप ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में चले जाएं, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, किसी भी फील्ड की रिसर्च में आप जाते हैं तो आजकल फोर फ्रंट पे AI है, मशीन लर्निंग है, डीप लर्निंग है। इफ यू आर गोइंग फॉर अ रिसर्च कैरियर, कीप दिस इन माइंड कि AI की एप्लीकेशन इट्स वेरी वेरी वेरी क्रूशियल एंड यू शुड नो AI और उसका एप्लीकेशन कैसे है और किस तरीके से यू विल यूटिलाइज इट टू सॉल्व द रिसर्च प्रॉब्लम्स ऑफ अटमोस्ट इम्पोर्टेंस। इस टॉपिक से अगर हम आगे चलें तो पाकिस्तानी स्टूडेंट जो सिविल इंजीनियरिंग करता है, पाकिस्तान में तो हमने बात की बहुत सारे प्रॉस्पेक्ट्स हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में भी, प्राइवेट सेक्टर में भी। अगर हम अब्रॉड की बात करें तो जो सबसे बड़ी मार्केट है पाकिस्तानी ग्रेजुएट्स के लिए, दैट आई सपोज वुड बी द गल्फ। तो डॉक्टर फिजान, इस गल्फ की मार्केट को आप किस तरह देखते हैं, और अगर एक पाकिस्तानी ग्रेजुएट, सिविल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट, गल्फ में जॉब अप्लाई करना चाहते हैं, वहाँ पे सिक्योर करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे?
2: जी बिल्कुल, गल्फ जो है मेरे ख्याल में इस टाइम सबसे ज़बरदस्त जॉब मार्केट है सिविल इंजीनियर्स के लिए। उसमें सऊदी अरब हाईलाइटेड है क्योंकि सऊदी अरब में इस टाइम रैपिडली ग्रोथ हो रही है, एक्सपोनेंशियली ग्रोथ हो रही है और पूरे के पूरे नए शहर बन रहे हैं, तो वहाँ पर बहुत सारी जॉब्स क्रिएट हो रही हैं और ये जॉब्स कम अज़ कम अगले डेकेड तक ज़रूर रहेंगी। तो इस वजह से जो आज सिविल इंजीनियरिंग में दाखिला ले रहे हैं उनके लिए भी ये जॉब्स अवेलेबल होंगी जब वो पास आउट होंगे। इसके लिए ज़रूरी ये है कि आप लोग सबसे बेहतरीन जो स्टेट ऑफ द आर्ट टूल्स एंड टेक्निक्स हैं उनसे अपने स्टूडेंट्स को मुतारिफ करवाएं और वो जो स्टूडेंट्स हैं वो जॉब रेडी हों जब वो ग्रेजुएट हों। इससे मतलब ये भी है कि उनको रूल्स एंड रेगुलेशंस का, कोड्स का, डिफरेंट टूल्स एंड टेक्निक्स का, डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट टाइप्स का अंदाज़ा हो और गल्फ स्पेसिफिक भी उनको ये एक्सपोजर मिले। तो मेरा ख्याल है अगर एक ऐसा ग्रेजुएट जिसको ना सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग की फंडामेंटल्स का पता है बल्कि साइट गल्फ स्पेसिफिक चैलेंजेस का भी पता है, वहाँ के कोड्स एंड रेगुलेशंस का पता है, तो वो एक ज़बरदस्त और बड़ा हॉट कैंडिडेट बन जाएगा एक गल्फ में जॉब के लिए।
1: जी आपने बहुत बेहतर बात की कि यू शुड लर्न जॉब रेडी स्किल्स, और यही चीज़ है जो UCP के सिविल इंजीनियरिंग प्रोग्राम को बाकियों से मुमताज़ करती है। हम न सिर्फ आपको एजुकेशन दे रहे हैं, सिविल इंजीनियरिंग की बेसिक्स पढ़ा रहे हैं, बल्कि वी डू आर लेवल बेस्ट टू गिव यू दी ट्रेनिंग टू दीज पर्टिकुलर टूल्स एंड स्किल्स दैट यू नीड टू एंटर नॉट ओनली द पाकिस्तानी मार्केट बट द मार्केट इन गल्फ एज वेल एज अदर कंट्रीज। इसमें एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ वो आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, और अनफॉर्चुनेटली हमारे पास एक ज़्यादा तादाद ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, और ये सिर्फ UCP की मैं बात नहीं कर रहा है, अक्रॉस द बोर्ड पाकिस्तान के यूनिवर्सिटीज़ में जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं वो गालबन इसकी अहमियत को समझते नहीं, जबकि ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने आइडियाज़ को, अपने डिज़ाइन को, अपनी बात को बेहतरीन तरीके से कम्युनिकेट कर सकें। और चूँकि हम बात कर रहे हैं अब्रॉड की, तो इंग्लिश में कम्युनिकेशन इसलिए ज़रूरी है, दैट इज़ द यूनिवर्सल लैंग्वेज राइट नाउ। अगर आप इंग्लिश में इफेक्टिवली कम्युनिकेट नहीं कर पाते तो हाउ एवर द इंजीनियरिंग नॉलेज दैट यू हैव, यू वॉन्ट बी एबल टू प्रोड्यूस एनीथिंग गुड फ्रॉम दैट। वाई? बिकॉज यू वॉन्ट बी एबल टू शेयर योर आइडियाज एंड कम्युनिकेट इफेक्टिवली। अब इसको अगर हम अपने सिविल इंजीनियरिंग प्रोग्राम में लें तो हम मुख्तलिफ कोर्सेज में स्टूडेंट से प्रेजेंटेशंस कर लेते हैं, उनसे रिपोर्ट राइटिंग करवाई जाती है और क्लास में एक्टिव पार्टिसिपेशन एंड डिस्कशंस चलती हैं। ये तमाम वो चीज़ें हैं जिनको हमने बाय डिज़ाइन इम्प्लीमेंट किया है ताकि हमारे स्टूडेंट्स की कम्युनिकेशन स्किल्स कदरे बेहतर हो सकें। अब इससे आगे जब हमने गल्फ की बात की, तो चूँकि आप US में हैं आप हमें बताना चाहेंगे कि यूएस की मार्केट कैसी है और अगर उसमें एंटर होना हो तो क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी?
2: जी बिल्कुल, मैं अगर इंटरनेशनली बात करूँ गल्फ के बाद, तो मेरे ख्याल में सेकंड नंबर पे मैं सिविल इंजीनियर्स के लिए जो लोकेशन सजेस्ट करूँगा वो ऑस्ट्रेलिया, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया में भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रही है सिविल इंजीनियरिंग के हिसाब से. और डेफिनेटली यूएस इज़ डेफिनेटली अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज, इट ऑलवेज हैज़ बीन एंड इट विल रिमेन द सेम. यूएस इज़ द सेंटर ऑफ ऑल द इनोवेशन और वहाँ पे कंटिन्यूस ग्रोथ चलती ही रहती है एक कंटिन्यूस पेस पे. तो इस वजह से मैं रिकमेंड करूँगा कि स्टूडेंट्स अपने गोल्स को, अपने एम्स को हाई करें और इन इंटरनेशनल मार्केट्स को टारगेट करें. अब यहाँ पर एक जो कंस्ट्रेंट है वो ये है कि आप बैचलर्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम अ पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी करके यू कैन नॉट डायरेक्टली गो टू अ जॉब इन द यूएस और इन ऑस्ट्रेलिया और एनी अदर वेस्टर्न कंट्री. पॉसिबल है लेकिन इट्स सो रेयर कि इट्स ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल. तो उसका सबसे आसान तरीका ये है कि आप ग्रेजुएट स्टडीज़ को परसू करें, एक मास्टर्स ऑफ एनी फील्ड ऑफ योर चॉइस को परसू करें, आइदर इन ऑस्ट्रेलिया, यूएस, कनाडा, इंग्लैंड भी आजकल लोग जा रहे हैं, वहाँ पर दोबारा से जॉब्स क्रिएट होना शुरू हुई हैं. तो जब आप वहाँ पर मास्टर्स कर लेते हैं तो फिर आपके लिए जॉब्स ईजी हो जाती हैं, पॉसिबल हो जाती हैं, एंड देन यू हैव योर होल लाइफ देयर.
1: जी, यहाँ पे एक चीज़ बताता चलूँ, इसका ये कतन मतलब नहीं कि वॉशिंगटन एकॉर्ड्स एक्रेडिटेड डिग्री एक्सेप्टेबल नहीं है, वो एक्सेप्टेबल है. आप इसकी मिसाल मैं आपको ये देता हूँ कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया की इमिग्रेशन अप्लाई करें और आपकी वॉशिंगटन एकॉर्ड क्रेडिटेड डिग्री ना हो तो यू हैव टू गो थ्रू अ लेंथी प्रोसेस जिसमें आपने मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने होते हैं टू फॉर देम टू असेस योर डिग्री. एंड वंस दे हैव गॉन थ्रू दैट असेसमेंट फिर वो आपकी डिग्री को वेरीफाई करते हैं, हाँ जी इट इज इक्विवेलेंट टू देयर डिग्री, एंड देन यू कैन प्रोसीड विद इमिग्रेशन. लेकिन अगर आपकी वॉशिंगटन एकॉर्ड एक्रेडिटेड डिग्री होती है तो यू कैन स्किप ऑल दैट प्रोसेस. और ये मैंने एक मिसाल ऑस्ट्रेलिया की दी. इसी तरह बाकी कंट्रीज जो कि वॉशिंगटन एकॉर्ड में शामिल हैं आज सिग्नेटरीज, उनमें आप अपनी वॉशिंगटन एकॉर्ड एक्रेडिटेड डिग्री के साथ एंटर हो सकते हैं. लेकिन चूंकि अब जॉब मार्केट में वहाँ पे भी वहाँ के इंजीनियर्स भी हैं, वो भी कम्पीट कर रहे हैं और आप भी कम्पीट कर रहे हैं बाहर से आके, तो ये याद रखिएगा किसी भी कंट्री में, किसी भी मुल्क में, वहाँ की हुकूमत हमेशा कोशिश करती है कि अपने ग्रेजुएट्स को पहले जॉब दी जाए. ये चीज़ जब आपकी नज़र में है तो आप याद रखें, आपकी जैसे डॉक्टर फैजान ने कहा, डायरेक्टली वहाँ पे जॉब मार्केट में लैंड करना विद अ जॉब शायद बहुत नामुमकिन ना हो लेकिन मुश्किल ज़रूर है. आसान तरीका ये है कि आप वहाँ पे जाएं और जहाँ के मास्टर्स ग्रेजुएट डिग्री करें, मास्टर्स कर लेते हैं तो यू आर कंसिडर्ड के इन द जॉब मार्केट यू हैव इक्वल अपॉर्चुनिटी नाउ. और सेकेंडली जब आपने मास्टर्स कर ली तो आपकी वैसे भी अपॉर्चुनिटीज एनहांस हो जाती हैं. बैचलर्स के बाद जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो कम हैं, मास्टर्स के बाद आपके पास अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा हो जाती हैं. तो आज के प्रोग्राम में हम लोगों ने डिस्कस किया वॉशिंगटन एकॉर्ड एक्रेडिटेड डिग्री को, यूसीपी में प्रोग्राम्स को. हमारे मेहमान डॉक्टर फैजान ने फुलब्राइट स्कॉलरशिप्स के मुतालिक आपको मालूमात दी, यूएसए की जॉब मार्केट को हमने एक्सप्लोर किया और गल्फ की जॉब मार्केट को एक्सप्लोर किया. मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये मालूमाती प्रोग्राम अच्छा लगा होगा और आप लोगों की इंफॉर्मेशन में इट वुड हैव एडेड समथिंग टू इट. इसके साथ ही मैं आप लोगों से इजाज़त लूँगा. आप लोग सुन रहे हैं FM 92.6.

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उगने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

आते हैं, हम इनको जो है वो इस पर मैं आपको मज़ीद एक्सप्लेन करूँगा और आपको बहुत अच्छे से इस पर बात करेंगे। ये बहुत एक हॉट टॉपिक है और मैं तो बहुत दिनों से इस पर बात करना चाह रहा था। हम एक शॉर्ट ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे।

0: तो मैं इसमें थोड़ा सा एड ऑन करता चलूं कि जिस तरह आपने क्लोथिंग ब्रांड्स का बताया, आपने टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात की कि उसमें वो बिग डाटा को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, मैं इसमें थोड़ा सा एड ऑन करता चलूं कि मार्केटिंग में और एडवर्टाइजमेंट की स्ट्रेटजीज बनाने में और उसकी रिसर्च में बहुत ज्यादा बिग डाटा का इस्तेमाल हो रहा होता है। कस्टमर और कंज्यूमर की जो ट्रेट्स हैं, उनके जो डेमोग्राफिक्स हैं, उनके जो कलेक्शन है, उनकी जो उनका जो एक रिकॉर्ड है, उसको रखने में बहुत ज़्यादा बिग डाटा का इस्तेमाल किया जा रहा होता है। और बिग डाटा सोशल मीडिया साइट्स पर और सामाजिक रबतों की जितनी भी हैं, उसके अलावा वेबसाइट्स हैं, जितने भी हमारे डिजिटल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, उन तमाम में इस डाटा को कलेक्ट किया जा रहा होता है और वक्त इस्तेमाल भी किया जा रहा होता है। आपका क्या ख्याल है?
1: अच्छा, मुझे लगता है अगर हम इस बात को समअप करें तो मुझे ऐसा लगता है कि बिग डाटा ओवरऑल कंज्यूमर के माइंडसेट को समझने के लिए यूज़ किया जाता है कि उसकी नीड्स क्या हैं, उसके इंटरेस्ट क्या हैं, फिर उसके अकॉर्डिंगली उसको वही प्रोडक्ट सेल आउट की जाती है। बेसिकली इसका ज़्यादातर जो इंडस्ट्री की जहाँ पे हम बात कर रहे हैं, इसके और भी बहुत से इस्तेमाल हैं, मगर जहाँ पे हम इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं तो उसमें कंज्यूमर को और चीज़ों को सेल आउट करने के लिए डाटा को इस्तेमाल किया जाता है कि अगले बंदे का कंज्यूमर का माइंड सेट आपको पता चले कि उसके इंटरेस्ट क्या है, वो क्या चीज़ देखता है, वो क्या चीज़ नहीं देखता, वो क्या यूज़ करता है, क्या नहीं यूज़ करता। तो ये तो एक ये बात आ गई, मगर इसके कुछ नेगेटिव साइड्स ही मुझे ऐसा लगता है शायद, मगर ये आई थिंक इसका सबसे बेहतर जवाब वक्त से बेहतर और कोई नहीं दे सकता। जिस तरह कि आप देखा जाए तो अगर आपका एक पूरा डाटा आप क्या इस्तेमाल कर रहे हो और क्या इस्तेमाल नहीं कर रहे, वो किसी एक ऐसी कंपनी के पास जा रहा है, तो क्या आप वो आपका उस डाटा को सेफ इस्तेमाल कर भी रहे हैं कि या नहीं कर रहे, आपका इस बारे में क्या कहना है?
0: जी आजम, आपने बहुत अहम नुक्ते पर बात की कि इसके नुकसान और इसके अलावा थ्रेट्स। आपने देखा होगा कि गुज़िश्ता 2-3 सालों के अंदर लोग थोड़े से ना कॉन्शियस हुए हैं इस हवाले से कि उनकी प्राइवेसी का किस कदर ख्याल रखा जा रहा है, पॉलिसीज जिन पे वो एग्रीमेंट कर रहे हैं उन पे क्या ख्याल किया जा रहा है। हम जब कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो उस पे हमारे से प्राइवेसी और पॉलिसी की एक एग्रीमेंट होता है जिस पर हम साइन करते हैं। साइन से मुराद ये है कि हम उसको एग्री कर देते हैं, तो वो अ सॉर्ट ऑफ साइन हो जाता है, हम एग्री कर लेते हैं कि हम आपकी जो भी पॉलिसीज हैं उनको एक्सेप्ट करते हैं। इस हवाले से शायद आपको याद हो, मैं सामीन को बताता चलूं कि एक मैसेंजर कंपनी के खिलाफ बहुत ज़्यादा एक कंट्रोवर्सी बनी, उन्होंने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी को फिर चेंज किया और बहुत ज़्यादा लोगों ने कॉन्शियस हो गए और उन्होंने कहा कि हम इस मैसेंजर को यूज़ नहीं करेंगे, हम मुतबादल ऐप्स मुतारिफ करवाए गए और बहुत से ऐप्स जो है वो चले। अच्छा, आपने नुकसानात की बात की तो उसी एप्लीकेशन की एक पेरेंट कंपनी थी जिसके खिलाफ इंग्लैंड में और बहुत सी पार्लियामेंट्स में बकायदा तौर पर सवालात उठाए गए और उन पर बात की गई कि आप ये जो डाटा कलेक्ट कर रहे हैं इसका यूज़ कहाँ पे कर रहे हैं, इसका कहीं ये डाटा अब्यूज़ तो नहीं हो रहा। मैं थोड़ा सा सामीन को भी और आपको भी बताता चलूं कि इसका थोड़ा सा कलेक्शन होती कैसे है। सबसे पहले हम साइट की बात कर लेते हैं। जब भी कोई कंज्यूमर, जब भी कोई यूज़र अपनी किसी भी साइट पर जाता है तो वहाँ पर वो कुकीज़ को एक्सेप्ट करता है। कुकीज़ एक्चुअली आपका डाटा कलेक्ट करती हैं। जब कुकीज़ आपके एक ट्रेट को कलेक्ट करती हैं कि आप किस मुल्क से हैं, आपकी एज क्या है, आपका जेंडर क्या है, आप किस प्लेटफॉर्म से वेबसाइट पे आए हैं, लेट सपोज अगर वो लिंक्ड है तो आप फेसबुक से आए हैं या किस सोशल मीडिया के किस प्लेटफॉर्म से वेबसाइट पे आए हैं, आप उस वेबसाइट के बाद किस वेबसाइट पर गए हैं, उसके अकॉर्डिंगली फिर हमारी तमाम कन्वर्सेशन चल रही होती है, हमारी तमाम एडवर्टीजमेंट उसके अकॉर्डिंगली आ रही होती है। और लोग आजकल इस पर हमने देखा कि मीम्स भी बहुत ज़्यादा बन रही हैं कि हम अगर किसी चीज़ की बात करें या किसी चीज़ को सर्च करें तो उसके बाद हमें एडवर्टीजमेंट, लेट सपोज हमने घड़ी की सर्च की है और हम घड़ी खरीदना चाहते हैं तो उसके बाद आपको एक घड़ी की ही तमाम एडवर्टीजमेंट आ रही होंगी। और बड़ी ये हैरान कुन हद तक है कि ये थोड़े से वक्त के अंदर, सेकेंड्स के अंदर जो है वो बिल्कुल एल्गोरिदम में हमें एक तब्दीली महसूस होती है, हमें रिजल्ट्स में तब्दीली महसूस होती है और एडवर्टीजमेंट में बहुत ज़्यादा चेंज होता है। तो ये उसी बिग डाटा का कमाल है और ये उसी बिग डाटा के थ्रू ही डाटा कलेक्शन है और उसकी डाटा की प्रोसेसिंग है, जिस डाटा को इन्फॉर्मेशन में कलेक्ट किया जाता है और उसको इतना एफिशिएंटली यूज़ किया जाता है कि वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है। यकीनन इसके नुकसान भी होंगे, लेकिन मुझे लगता है अगर हम पास्ट के उन तमाम एक्सपीरियंसेस को देखें तो इसका फ़ायदा नुकसान से बहुत ज़्यादा है। जितने हमें इसके नुकसान फेस करने पड़ रहे हैं, अगर हम उस पर थोड़ा सा रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ चलें तो फ़ायदा बहुत ज़्यादा है। जी हाँ
1: जी, नवीर भाई आपने बिल्कुल ठीक बात की। आपने दरमियान में एक बात की एल्गोरिदम्स की, मैं एल्गोरिदम की बात थोड़ी सी करना चाहता हूँ कि जिस तरीके से चीज़ों को डिज़ाइन किया जाता है सोशल मीडिया के थ्रू, जो सोशल मीडिया पर सब चीज़ें डिज़ाइन जिस तरीके से की जाती है, उनका एल्गोरिदम जिस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है इंसान के इंटरेस्ट के मुताबिक। फॉर एग्जाम्पल आपने घड़ी की मिसाल दी कि अगर आपने घड़ी चेक की है और आपने उसके बारे में सर्च आउट किया तो ऑटोमेटिकली आपको सारी उसी की चीज़ें आती जाएंगी। इसी तरीके से मैं बात करूंगा कुछ निजी कंपनीज आजकल की ऐसी हैं, कुछ प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जहां पे अगर आप एक इंटरेस्ट की वीडियो शो करते हो, फॉर एग्जांपल आपने कोई इस्लामिक वीडियो आप देखते हो, तो आपको आने वाली सारी वीडियोज इस्लामिक वीडियोज ही होती हैं। उसके एल्गोरिथम को इस तरीके से डिजाइन किया जाता है, क्यों? क्योंकि वो इंसान को कहते हैं ये आने वाले वक्तों में कि इंसान को इतना बेहतर नहीं समझेगा जितना टेक्नोलॉजी इंसान को बेहतर समझ सकती है, और वो सिर्फ विद दी हेल्प ऑफ डेटा और एल्गोरिथम्स के थ्रू। एक होता है इंसान का बायोकेमिकल डेटा जो कि इंसान के दिल में क्या चल रहा है, उसकी सोच में क्या चल रहा है, उसकी फीलिंग्स क्या है, वो इंसान खुद ही समझ सकता है। अब एक जो पैराडाइम शिफ्ट आया है, अब यही उसकी जगह बायोकेमिकल एल्गोरिथम की जगह ये टेक्नोलॉजी ले रही है और वो इंसान को समझने की कोशिश कर रही है, और ये आई थिंक इंसान को समझने की कोशिश इसीलिए ही कर रही है कि वो इंसान को किसी न किसी हद तक फायदा पहुंचा सके। तो ये थी बिग डेटा की बात। इसके बाद हम बात करेंगे और किस किस जगह पे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, किस इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, और किस तरीके से इंडस्ट्रीज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इंसानों को भी फायदा पहुंचा रही है और अपनी सेल्स और अपने दूसरे कामों में भी मुफीद हो रही है। मगर हम इसकी बात करेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद।

0: entertainment, news, knowledge, 24/7, only on UCP FM 92.6. UCP ki duniya.
1: वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं एफएम 92.6 यूसीबी की दुनिया प्रोग्राम नई दुनिया में आपका खुश आमदीद। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे डेटा पे, बिग डेटा पे, एल्गोरिदम्स पे, कि डेटा क्या होता है, क्या क्या नहीं होता और इंडस्ट्री में किस तरीके से इस्तेमाल होता है। नबील भाई, अब इसके अलावा कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि इंडस्ट्री में इस्तेमाल हो रही है, टेक्नोलॉजी ऐसी जो कि बहुत सी जगहों पर फ़ायदा पहुँचा रही है इंडस्ट्री में?
2: जी आज़म, बिग डेटा पर हमने ब्रेक से पहले बात की और बिग डेटा का हमने थोड़ा सा इस्तेमाल देखा कि किस तरह वो इस्तेमाल हो रहा है एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजीज में, मार्केटिंग में, एक गैप समझने के लिए, लोगों के पेन पॉइंट समझने के लिए, ताकि प्रोडक्ट को वो उस तरह तैयार कर सकें। और ये तमाम चीज़ें, बहुत से ऐसे पहलू हैं जिन पर बात हो सकती है, लेकिन अगर हम चीदा पहलू देखें, थोड़े से ब्रॉड पहलू देखें जिन पर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, जिनकी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है टेक्नोलॉजी, तो मेरे ख्याल से हम ड्रोन की बात किए बगैर नहीं रह सकते। ड्रोन ने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है हमारी इंडस्ट्री में, हमारी बहुत सी इंडस्ट्रीज़ में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है और बहुत मुख्तलिफ अंदाज में उसकी कंट्रीब्यूशन है। आपका क्या ख्याल है?
1: बिल्कुल नबील भाई, ऐसे ही है। ड्रोन की जहाँ तक बात की जाए तो ड्रोन आज से पहले, अगर आप पीछे दौर में चले जाएँ तो ड्रोन आज से पहले सिर्फ इस्तेमाल होता था फिल्म इंडस्ट्रीज़ में, मूवीज़ बनाने के लिए, शॉर्ट्स को लेने के लिए, डिफरेंट चीज़ों को लेने के लिए। मगर अब आपका क्या ख्याल है कि ड्रोन मूवीज़ इंडस्ट्री के, फिल्म इंडस्ट्री के अलावा कौन सी ऐसी इंडस्ट्रीज है जिसमें ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है?
2: जी आज़म, एक तो जैसे कि आपने मूवी इंडस्ट्री की बात की, तो अगर हम तकरीबन एक दहाई पीछे चले जाएं तो मूवी इंडस्ट्रीज़ में भी ड्रोन्स नहीं इस्तेमाल हुआ करते थे, और हम इसकी अहमियत का अंदाज़ा इस बात से हो सकता है कि तब हेलीकॉप्टर्स पर शॉट्स लिए जाते थे, एरियल शॉट्स लिए जाते थे, और मूवीज़ की जो एक्सपेंडिचर है वो कितना ज़्यादा होता होगा, और ड्रोन ने इसको किस कदर ईजी कर दिया और किस कदर बजट फ्रेंडली कर दिया है। आपने पूछा कि इसके अलावा किन पहलुओं में इस्तेमाल हो रहा है, कौन सी इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल हो रहा है। आज़म, बहुत इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल हो रहा है। अगर हम बात करें एग्रीकल्चर की, तो हमारे देही इलाकों में लोग अपना एक सर्विलेंस रखने के लिए, अपने खेतों की निगरानी के लिए, खेतों का एक चेक रखने के लिए कि कहाँ पर पानी दिया जा रहा है, कहाँ पर बीज है, कहाँ पर फसल डैमेज है और हमने उसको रिपेयर करना है। आपने देखा होगा कि एक ग्रीन शीट लगाई जाती है, और किसानों में भी जो बड़े किसान होते हैं, जिनकी ज़मीनें ज़्यादा होती हैं, वो एकड़ों के हिसाब से ज़मीन होती है, और वो एक बंदा उसको, उसका सर्विलेंस, उसकी एक चेक नहीं रख सकता। बहुत एक इम्पॉसिबल चीज़ है ये। ड्रोन्स ने इसको पॉसिबल किया है। अब वो ड्रोन उड़ाया जाता है और एकड़ों की ज़मीन का जो एक मुहासरा है और एक जो एक चेक है, वो 10 मिनट के अंदर, 15 मिनट के अंदर कर लिया जाता है, और इससे बहुत एक एफिशिएंसी आ रही है। जो हमारी यील्ड है, जो एग्रीकल्चर की जो एक एंड प्रोडक्ट है, उसमें बहुत ज़्यादा जो एक प्रोडक्शन है वो बढ़ रही है, क्योंकि उसमें नुकसान कम हो रहे हैं। उसके अलावा इंडस्ट्री में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। आप क्या कहेंगे इस बारे में?
1: जी नवील भाई, बिल्कुल ऐसा ही है। जो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, हम कहते हैं कि यार ये चीज़ में किस तरीके से इंडस्ट्री में काम कर रही है, ये ड्रोन किस तरीके से टेक्नोलॉजी उसमें एग्रीकल्चर में किस तरीके से फ़ायदा दे रहे हैं, मगर देखा जाए तो जैसे आपने बात की कि एंड प्रोडक्ट की, तो ये आपका सबसे पहली बात है कि जिस तरह ड्रोन अब जो एग्रीकल्चर में इस्तेमाल किया जाता है, जो बड़े फार्मर्स हैं वो इसको इस्तेमाल करते हैं अपनी फसल को देखने के लिए, जैसे आपने बताया कि एकड़ों के हिसाब से उनकी ज़मीनें होती हैं। और अब देखें ना, अब हर एक इंसान एक एकड़ का सफ़र तो नहीं तय करेगा ना, और पूरी वन बाय वन हर चीज़ को चेक करेगा। उससे होता ही है कि बहुत से अगर इंसान करने भी चाहे तो उसमें बहुत से ऐसा होगा कि इंसान थक जाएगा, इंसान की जो पावर है वो ज़्यादा इस्तेमाल होगी, और बहुत से ऐसा होगा, जगह पे ऐसा होगा कि कोई ऐसी फसल होगी वो ख़राब हो रही होगी और इंसान की वहाँ से नज़र से इधर उधर हो जाएगी। तो ड्रोन ने इंसान के एक वक्त को भी बचाया है और उसकी ओवर एफिशिएंसी को भी बढ़ाया है फसल की, और एक एंड प्रोडक्ट जिस तरीके से मार्केट में आ रही है वो ज़्यादा बेहतर होती है और ज़्यादा अच्छी होती है, क्योंकि हमें पता चल जाता है कि कौन सी फसल किसको किस टाइम पर कितना पानी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जो एक एंड में जाकर कोई फसल लगी हुई है, कोई एक ऐसा पौधा जो कि ख़राब हो रहा है, तो वो हम ड्रोन की मदद से वो चेक कर सकते हैं। दूसरी बात नबील भाई, इसके ज़रिए से हम उनको एक बीज भी दे सकते हैं, जो एक पानी का ज़रिया होता है, वो छोटा मोटा उनको पानी भी वहाँ पर फ्राहम कर सकते हैं ड्रोन के ज़रिए, और कुछ बीज भी वहाँ पर उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। वो आपको ज़रूरी नहीं है कि आप एकड़ का सफ़र तय करो और जाके एक फसल को जाके आप दो, बल्कि आप ड्रोन की मदद से आप उसको ओवरऑल आप उनको बीज प्रोवाइड कर सकते हो।
2: बिल्कुल ऐसे ही है। आपने बीज की बात की, मैंने रिसेंटली ये देखा, कुछ बीज होते हैं जो इन डेप्थ उनको बोना होते हैं, वो तो जाहिर है उसमें भी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही होगी, लेकिन हम स्पेसिफिकली अगर ड्रोन्स की बात करें तो जो बीज फेंके जाते हैं पानी के अंदर और वो उसमें बहुत एफिशिएंटली जो है वो ड्रोन इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इसके अलावा हमने देखा कि सामाजिक राबतों की वेबसाइट्स पर और ऑनलाइन स्टोर्स की बात करें, एक बहुत प्रोमिनेंट ऑनलाइन स्टोर है जिन्होंने अपनी डिलीवरी के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल शुरू किया है। ये बहुत एक इनोवेटिव सी बात है, क्या ख्याल है आपके? आपने सुना है इस बारे में?
1: बिल्कुल नबील भाई, ऐसी है। मुझे तो ऐसा लगता है कि टेक्नोलॉजी बनाई ही इसलिए जाती है कि वो इंसान की जो एक मेहनत है उसको कम करने के लिए, इंसान का जहां पे एक सफर तय होता था हजारों किलोमीटर का सफर, उसको शॉर्ट करने के लिए, जहां पे इंसान सफर करता था कितने कितने दिन, उस सफर को शॉर्ट करने के लिए ही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता था। जिस तरीके से अगर आपने ड्रोन्स की बात की और जो डिलीवरी की बात की, तो ये देखें ना, उसने एक इंसान की एक पावर को कितना बचा दिया। जहां पे एक इंसान ने निकलना था और पूरा दिन उसने अपना टाइम लगाना था, डिलीवरी जगह जगह करनी थी, उसकी जगह ड्रोन ने ले ली है। तो कहीं ऐसा नहीं है कि टेक्नोलॉजी जो है वो इंसान की जगह ले लेगी आने वाले वक्तों में?
2: नहीं, मुझे देखें, हर चीज़ के दोनों पहलू होते हैं, फिर वही बात, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस तरह होगा। अगर होगा तो बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ निकल रही होंगी। सर्विलेंस अगर हम उससे कर रहे होंगे तो बहुत से ऐसे पहलू भी होंगे जहां पर हमें ज़रूरत बढ़ जाएगी। इस तरह के मज़ीद टॉपिक पर भी हम बात करेंगे। इसके हवाले से आदम शॉर्टली बताएंगे, इसके अलावा ड्रोन्स के अलावा आपको क्या लगता है कि किस टॉपिक पर हम जो है वो, इसके अलावा क्या ऐसा टॉपिक है जो कंट्रीब्यूट कर रहा है, कौन सी ऐसी चीज़ है, कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी?
1: नबील भाई, बात की जाती है तो बहुत सी चीज़ें हैं जिस पर हम बात कर सकते हैं, और बहुत सी ऐसी जगह पर टेक्नोलॉजी, कोई ऐसी जगह है ही नहीं जहाँ पर टेक्नोलॉजी फ़ायदा नहीं दे रही। आप अपनी ओवरऑल अगर हम अपनी ज़िंदगी को ही एक देख लें, एक ज़िंदगी को एक पूरा नोट कर लें, अपनी एक डेली रूटीन को ही नोट करें, तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि टेक्नोलॉजी के बगैर हमारी ज़िंदगी क्या है। तो टेक्नोलॉजी तो एक इंसान की ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका हुआ है और हर एक पहलू में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। टॉपिक्स तो बहुत ज़्यादा, मगर हम स्पेसिफिकली एक से दो टॉपिक्स हैं वो बहुत मज़ेदार टॉपिक्स हैं जिस पर हम बात करेंगे, मगर एक छोटी सी ब्रेक के बाद।

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उतने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उतने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उगने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

आवाज मुनफरिद, हौसले बुलंद और लगन है सच्ची, इसीलिए तो यूसीपी की दुनिया के साथ ये दोस्ती है पक्की। कीप योर ईयर्स हेल्दी विद एफएम 92.6।

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उगने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उगने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

0: उन्होंने काम किया, लेकिन जो उनको इज्जत और रुतबा उनको मिला वो किसी और को नहीं मिल सका।
1: मौसीकी का आगाज उन्होंने तबला सीखने से किया, लेकिन उसके साथ साथ गायकी की रियाजत भी करते रहे। उनके फनी सफर का बाकायदा आगाज अपने वालिद की रस्म चहलम पर हुआ, जो उनकी खानदानी रिवायत थी।
2: जिस तरह वो समेट देते थे सब कुछ कवाली में, ये उन्हीं का खासा था।

0: ये अल्लाह की अता होती है और गिफ्ट, गॉड गिफ्ट होता है कि जो चीज़ आप कर रहे हैं वो अच्छी लग रही है और लोगों से प्यार कर रहे हैं।
1: उस्ताद नुसरत फतेह अली खान कवाली के मैदान में कदम रखते ही जान चुके थे कि कवाली को जिंदा रखना है तो कुछ मुनफरिद करना होगा। उन्होंने सरगम और लयकारी का इंतहाई खूबसूरत इस्तेमाल करके कवाली को एक ऐसी शक्ल दे दी कि सुनने वाला उसके सहर में जकड़ा चला जाता। कवाली जुग्राफियाई, लसानी और मजहबी हदूद की कैद से आज़ाद हो गई।
2: मुझे बचपन से यही शौक था कि मैं कुछ ना कुछ ऐसा नया अंदाज सीखूं जिससे मेरी एक अलग पहचान हो।

आजाद है, आजाद रहे। आप लोग इस पूर्ण पाकिस्तान में अपने अपने इबादत गाहों, मस्जिदों या मंदिरों में जाने के लिए

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

0: न्यूज।
1: मौसीकी चाहे आंसुओं का सफर हो, चाहे रक्स की दुनिया, दिल बुने मोहब्बत के आशियाने हो या फरागत का जमाना।
2: एक्सप्लोरिंग पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट अमारा माजिद और मेरे साथ है मेरे को होस्ट
3: आरजे फाद कुरैशी।
4: अस्सलाम वालेकुम, यू आर लिसनिंग टू FM 92.6 UCP की दुनिया। आई एम नूरुल हुदा विद द लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स इन द इंग्लिश न्यूज बुलेटिन, ओनली ऑन वन प्लेस।

0: एक नया अंदाज,
1: एक नई सोच,
0: एक नई पहचान,
1: एक नई लगन।
0: यूसीबी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
1: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिबे इल्म के किरदार से।
0: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की,
1: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में UCP No. 1।
0: जब मिलती है लगन,
1: मेहनत,
0: कामयाबी और खुलूस,
1: तो बनती है
0: UCP की दुनिया।
1: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
0: सुनते रहिए।

हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

0: 24/7 only on FM 92.6 UCP ki duniya.
1: दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उगने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। A public service message by University of Central Punjab.
2: आप सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.6 UCP की दुनिया।
3: आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया।